0: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online multicultural companion.
1: सुनो और गौर से सुनो. अरे पहले तालियां तो बजाओ. आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात.